0: बता दूं? वो यहीं पर।
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: Mid-mornings with Sunrise Retro.
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ
1: या चुप रहूं
2: ना
1: दिल में मेरे आज क्या है
2: क्या है
1: कह

0: This is Sunrise Retro.
1: We got it at Selco.
2: If you're in the trade, you can rely on Selco Builders Warehouse for thousands of products in stock every day. And now, with even sharper prices. We've looked at 96 of our most popular products and sharpened our prices on them even more. And every day, we'll keep watching those prices to make sure they stay sharp. Find out more online or at your local Selco. Sharper prices, with you for every job. Salty. See in store for details.
3: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड.
4: Get back to school and back to saving. With the Aldi Super 6, it's as easy as 1, 2, 3, 4, 5, 6. That's 6 award-winning fresh fruit and veg from only 49p. Including a healthy saving of 50% on mini apples. Talk about top marks for value. The Aldi Super 6, a super way to save.
5: Ready for a taste of Sri Lanka? Come home to Sri Lanka at Copper Ceylon, Bromley's multi-award-winning Sri Lankan restaurant. Feel the heart of authentic curries. Taste crispy, delicious hoppers. Sip signature cocktails and soak up the vibrant atmosphere of Sri Lanka right here in Bromley. Whether it's a night out, a special celebration or catering for your next event, Copper Ceylon brings the flavours of the island to your table. So what are you waiting for? Book your table now at copperceylon.com. Copper Ceylon, come home to Sri Lanka.
6: ये है सनराइज रेट्रो
5: हिट ऑफ द आवर विद सोनी मैक्स एवरी रन मैटर्स एवरी विकेट काउंट्स गेट रेडी फॉर द वुमेन्स एशिया क्रिकेट कप वॉच एक्सक्लूसिवली एवरी डे फ्रॉम 3:30 PM ऑन सोनी मैक्स स्काई 714 वर्जिन 806.

0: back-to-back songs with the Sunrise Radio app. Download now for free for Apple and Android devices.
1: सुनो सुनो अरे सुनो सुनो ए भाई और बहनो अरे मगन भाई छगन भाई सांभड़ो रे सांभड़ो ओ राघोबा ओ धोंडीबा आईका ओए जरनल सिंह ओए जरनल सिंह अरे तुझी भी सुनो पापे।

सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

0: वफादार है, खाता है कूड़ा भी रहता है भूखा भी, फिर भी को मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।

0: This is Sunrise Retro.
1: Attention!
2: Craving something truly delicious? Well, I've got some amazing news. For this September only, a free £30 credit. You can now get General Billamoria's Canteen, serving fresh your favourite authentic Indian dishes, delivered right to your door. Just search General Billamoria's Canteen on the Google Play Store or Apple App Store to download our brand new app and order your next incredible meal. No delivery fee, no service charge when you order through the GB Canteen app. And for this September only, when you download the app, you will receive a generous £30 credit. Terms and conditions apply.
3: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड.
4: Get back to school and back to saving with the Aldi Super 6. It's as easy as 1, 2, 3, 4, 5, 6. That's 6 award-winning fresh fruit and veg from only 49p, including a healthy saving of 50% on mini apples. Talk about top marks for value. The Aldi Super 6, a super way to save.
5: Sunrise Retro, London's retro Asian mix.

0: हाथ छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: अकेले
1: जालिम साथ ले ले।
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल न सकोगे समझे।
0: हाँ समझे।

0: किसी के
1: क्या करना है दीदी,
0: अरे हो रहना किसी के
1: हम रहे तो याद करोगे समझे
0: समझे।

0: Sunrise Retro, London's Retro Asian Mix.
1: तब गुल खिले खिले खिले गुल खिले जब दिल मिले तब गुल खिले जब दिल खिले तब दिल मिले मिले मिले मिले मिले दिल मिले

खाकर, अरे तेरी भूला आकर जाकर पीकर लेकर, आकर जाकर पीकर लेकर, आकर जाकर पीकर लेकर, पीकर लेकर, पीकर लेकर, पीकर लेकर, पीकर लेकर, पीकर लेकर, पीकर लेकर, पीकर लेकर, पीकर लेकर, पीकर लेकर।